मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले पूर

हैं तिस सब किश मिले इकना दूर है पास तुद बाज हो थाओ को नाही जिस पास हो मंगी है मन वेखो को निरजास सब तुद नु साला हुंदे दर गुरमुखा नु परगास। सलोक महला तीजा पंडित।

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार नानक जिस पिंजर मह बिरह।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया। जो

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई ए सुमत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परिवा जियो। माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूर्त चसे पल घड़िया तन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया।

तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावै अवसर करो हमारा पूरा जियो।

खीर अगावै, ज्यों निर धन धन देख सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो, ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोकौ हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

तुम सूखम होवा अस्तूली, तू जल निध तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिय जियो। तू सूत मणिये पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ सोई, अवर न कोय दिखा लिया जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंग राता, अपने करतब आपे जान है, आपे तुद संभालिय जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर।

दर्शन पेखा से कर भले जिनि हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौं बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

है, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपौ दयाला जियो, प्रभ अपना सास सास समारौ, ए मत गुर प्रसाद मन ता।

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब भौ बिनसै हर हर त्याई।

गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या जिस

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय,

तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया, हों वारी जीओ वारी, एकस स्यों चित लावणिया, गुरमति मन एकत घर आया।

मनमुख पाप पजा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

आन दिन सार संभाल हर राख है, गुरमुख सहज समावणिया। तुद जेवड मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही।

मनमुख परम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वडियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतहो अंत हुए सखाई हर अगम अगोचर।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसै।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनिया मन मुख भूला दूजै भाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनिया। सो

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सह

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा ब्रह्म मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभु राधा।

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी।

हे वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम

हाथ है कहो नानक बिचार कारण करते बस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाए।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टपह बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशन

लिखाया, तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया, पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर।

मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा।

बिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

नित नित सुख पाई, जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे, जन नानक हर रस तृप्ते।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनहु प्रभ ठाकुर, हम शरण

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसनहार।

शोभा घट घट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत

आद संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभिमान पहे निर्वैर आस पहर पूजहो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ।

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाकै कर्म प्राप्त होए।

सो सिमरहो अनाथ को नाथ। प्रभ चित आए सब दुख जाए, भय सब बिन सहै हर कै नाहि। दिन हर पौ काहे का मन है, हर बिसरत काहे सुख जान है। रहाउ जिन तारे बहु तरन।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देह ना मानस देह बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

सहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

अंतर साच सहज घर आवहे, राजन जान परम गत पावहे, सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भउ कै कर ताड़ी लावै, हों हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

प्रागुर पेटे सो झगर चुकावे, जेती है तेती केहु नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया,

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

नानक जन तरियै सोलह अष्टपदियां ग्वारे री गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाई को गोयली राख है कर सारा अहंस पालह राख ले आत्म सुख तारा इत उतरा खुदीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहा जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना दियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द।

हे परमाया गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए।

नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखहु कोए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझहो सदा सुख होई।

करै गुर कै शब्द पंच संहारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करै भेख धारी अंतर तिशना फिरै अहंकारी आप न चीनै बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत भरम पुलहाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गृही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेव है से बड़भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा।

पाए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगी है हर आपे लै छाए, मन कर हला अत निर्मला।

मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट कीना सहज सुहे

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछ ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो जीत।

पा गए। जास जपत बस आव है पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगह सिज।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहर।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी,

हरिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहों दिस जपिया नाओ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काढ़े।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ कह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हम मारे इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एक।

या जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छिडाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

सोए भ्रमते कीचित पिन अंध कूपते तिह कढ़हो जिह हो वह सो प्रसन्न न्या कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक तिह उस्तत करो।

जम मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपत तरहै हो आवे जाए तहत तहत अब टह परे।

स्थित पाव हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

साध संग पतियाना दुख सुख उआकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख।

भजन गुरुदेव बंध पर सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा अभ

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरहें।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्स नाहे कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान

बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिम

सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै

अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार एहु कछ न दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ।

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है होर।

है मुख खोले मन खोटे दिए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे भगत।

जस लिख है लाए पहावनी से हस्त पविता अठसठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए उधारियन दयो सेव अमिता। श्लोक महला पंजवा।

कह बड हम ही जिस है बुझाए सोई बुझे बिन बुझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चूक इन विद्मान कलही है।

जहे अबोल तहमन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई। अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महरव रहे हो।

अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम।

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो जो उपजाय सो अलाख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

अनल शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै जिन परम बिदारिया कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा।

जहाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे, सच्चे शब्द सुपाखिया। पढ़

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

पांड मुआ फंड पहलिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान पंड हो।

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखो अपर सकह अवह सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबावह।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

जपमन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमणम मत तत् ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हित।